अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम सदाए तुर्की से मुखातिब हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 जुलाई प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप निश्चियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्कसा 3A East 4A West में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें पेश की जाएंगी। उसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल खबरों के खुलासे से इख्तिताम पजीर होगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: मैड्रिड और बोर्डो के नजदीक बेमिसाल जंगलाती आग भड़क उठी, जिसके बाद फ्रांस और स्पेन में 200,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया गया है। बोर्डो एक फ्रांसी शहर जो सियासी मकामात दुनिया भर में मरूफ अंगूर के बागात से गिरा हुआ है। फ्रांसी सदर मैनुअल मैक्रोन ने जुम्मे को यूरोपियन से मदद तलब करने के बाद फौज को मुतहरक करने की दरख्वास्त की, ताकि मुल्क की तारीखी बदतरीन जंगलाती आग पर काबू पाया जा सके, जबकि एक मकामी एहलकार ने खबरदार किया कि शोले बोर्डो की जानब बढ़ रहे हैं। तकरीबन 44,000 अफराद अटलांटिक साहिल पर पोर्टो के जनूबी हिस्से में वाकया अमीर के फेरेट जजीरा नुमा से फरार हो गए, जहां वह सड़क शोलों के खतरे में थी। फ्रांसीसी और स्पानवी हुकाम के मुताबिक जनूब मगरबी फ्रांस में कम अज कम 1,41,000 अफराद, मैड्रिड के खत्ते में 25,000 अफराद को निकाला गया, जिनमें 1,200 से ज्यादा बुजुर्ग माजूर अफराद शामिल हैं। मैड्रिड और पेरिस ने यूरोपियन से इमदाद तलब किया, क्योंकि तेज हवाओं आंधी और खुशसानी जंगलात में लगी आग को भड़का दिया था। फ्रांसिस वज़ीर दाखला लॉरेंट नोनेंस ने कहा, फ्रांस ने इस पैमाने की आग पहले कभी नहीं देखी और बोर्डो की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का अहद किया। मैड्रिड इलाके हुकूमत के एमरजेंसी मैनेजमेंट चीफ कार्लोस नोविलो ने कहा है कि हुकूमत के नजदीक ये जंगलाती आग अपने बा में रूज पर है, इस वक्त फायर फाइटर्स की काबू पाने की सलाहियत से बाहर है। स्पेनिश सियासत पेद्रो सांचेस हफ्ते के रोज जल्द इस इलाके में जाएंगे, वहां के इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। फ्रांसीसी मनसब सियासतीन लिकोरोनो ने जुम्मे की देर रात अहम वज़रा का बहरानी इजलास तलब किया और कहा कि शोलों का मुकाबला करने के लिए कुल 1,000 फौजी तैनात किए जाएंगे, जिन्होंने अब तक 22,000 हेक्टर रकबा राख बना दिया है। हुकाम के मुताबिक के फेरेट की आग से निमटने वाले 1,000 में से तकरीबन 40 फायर फाइटर्स जख्मी हो चुके हैं। इस हफ्ते फ्रांस इटली में जंगलाती आगों में 3 फायर फाइटर्स हलाक भी हुए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू ज़िल्फ़ाइसर कार्ट्स ने कहा, उन्होंने फौज को मकबूजा मगरबी किनारे के फलस्तीन देहात में वसी मन पर फौजी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। जुम्मे को जारी मुश्तरक बयान में नेतन्याहू कार्ट्स ने यह भी कहा कि फौज को इस फलस्तीनी के घर को मस्मार करने की हदायत

सदके के पत्थर और थैले में रोटी, खामोश नेकी का वकार। अस्सलाम वालेकुम सामिन। सामिन, ज़रूरी नहीं कि वकार किसी शानदार महल में ही हो, बल्कि ये दिलकशी बाज़ औक़ात किसी महल्ले की मस्जिद के खामोश गोशे में रखे पत्थर के छोटे से खाने में पोशीदा हो सकती है। नेकी अपने हकीकी बुलंदी इसी वक्त हासिल करती है जब वो नज़रों से ओझल हो। हमारे खित्ते का ये उसूल के दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, एक नसीहत नहीं बल्कि संग मरमर पर नक्श होकर एक समाजी हुस्न और खामोश मुआहदा बन गया है। आज हम नेकी की सबसे खामोश, पुरसरार, बावकार और शायद सबसे अजीम सूरत का जिक्र करेंगे। वो मकामात जहाँ लेने वाला शर्मिंदा नहीं होता और देने वाला तकब्बुर में मुबतला नहीं होता, इन जगहों के नाम हैं सदके के पत्थर और इनकी आज की झलक थैले की रोटी में नुमाया नजर आती है। अगर आप तैयार हैं तो आइए खामोश नेकी के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। सदियों पहले के इस्तांबुल, इसके जिला

0: जाती है। हम आज भी इन बावकार पत्थरों और थैलों में पड़ी रोटियों की छोड़ी हुई इन्हीं अनदेखी निशानियों के बायस एक जान हैं, एक साथ हैं और एक दूसरे से मुंसलिक हैं। आज के इस हिस्से में हमने नेकी के वकार और हुस्न पर गुफ्तगू की। हमारी दुआ है कि आप हमेशा रहमत, खामोश खिदमत और इंसान दोस्ती के इस रास्ते पर कायम रहें। जब एक हाथ बढ़ता है तो एक जिंदगी बदल जाती है और तब कहानी मुकम्मल हो जाती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: देने वाले हाथ की कहानी।